0: ये रंडर
1: सके वा बायानिंग मित्र
0: सटाटो सटिंदिक ianing sametuane sawidrone memulihkan pekewahnya.